राजस्थान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274 735043 or email sales@sunriseradio.fm.
3: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 ब्रेडफोर्ड 7230 30.
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइट इन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवियर्ड मास्टर। A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901-831-165, Raman 078-341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
2: Official Media Partner Sunrise Radio.
3: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
4: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
3: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
4: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
3: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274733732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डेप पे सुनना चाहें तो ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंटन, मिल्टन कीन्स एंड वेस्ट लंदन में सुन सकते हैं आप। अगर एप्पल ऐप स्टोर पे सुनना चाहें तो भी और गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। आज हुमा खान जी कुछ लेट हैं, शायद वो थोड़ी देर के बाद आ जाएं। तो मैं आपका 2 बजे तक साथ निभाऊंगा और आप भी हमारा साथ निभाइएगा। तो चलते हैं दोस्तों प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू इन एसोसिएशन विद बेलव्यू रेजिडेंसेस। डिस्कवर स्टनिंग 4, 6 and even 8 बेडरूम होम्स। कॉल 0127-428-8252।
2: सनराइज रेडियो hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में, और इसके साथ ही चलते हैं दोस्तों टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:15 यानी कि 11:15। तो उमा खान जी बिस्मिल्ला
2: जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं उमा खान फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और दुआ करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मौसम के हिसाब से तो बहुत नाइस मौसम है मेरे हिसाब से।
0: हाँ, तो थोड़ी ठंड है,
2: मुझे अच्छी लग
0: थोड़ी थोड़ी हल्की सी फुहार भी हो रही है।
2: हाँ, मुझे अच्छी लग रही है, इतनी होनी चाहिए बस।
0: चलिए फिर ठीक है
2: जी।
0: तो अभी दोस्तों वक्त हो चुका है कमर्शियल का, तो चलेंगे कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद हीरा खान साहब शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, एक मस्ती भरा गीत होगा आपके नाम होगा और गुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम होगा और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी होगा। थोड़ा मस्ती भरा गीत है कविता कृष्णा मूर्ति की प्यारी सी आवाज़ में, तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद हमारी मुलाकात होती है।
3: 24 hours a day, Sunrise Radio. जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
6: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

जी दोस्तों, अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति को सुना और इसके साथ एक बार फिर कविता कृष्णमूर्ति को सुनते हैं एक और मुख्तलिफ अंदाज में। तो आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति को।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा। और हमें फोन किया जनाब नदीम मंसूर साहब, आपने दो गानों की फरमाइश की, दोनों हमारे सिस्टम में नहीं है, माफी चाहता हूँ। और बाद में नदीम भाई आपके लिए, क्योंकि आपने पुराने गीत की फरमाइश की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी अच्छे से पुराने गीत को चुनूँ आपके लिए, तो कोशिश करता हूँ। तो अब क्या करें, आपकी दोनों फरमाइशें नहीं पूरी कर पाया। तो एनीवे, शुक्रिया नदीम मंसूर साहब, आपके लिए कोई अच्छा सा प्यारा सा गीत पेश करूंगा। और उसके बाद गुलाम भाई, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया जनाब, यू मेड माय डे सर, और बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया। और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपकी जानस पे आपके स्टाफ के नाम होगा। उसके बाद आबिद भाई ने फ़ोन किया, बहुत अच्छा लगा, ऊपर तले दोनों भाइयों से बात हुई, और आबिद भाई शुक्रिया फ़ोन करने का, आपकी जानस से आपके स्टाफ के नाम भी होगा, और हीरा खान साहब आपके नाम भी होगा जनाब। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: फ्लैशबैक
1: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जो गीत प्ले करने जा रहा हूँ, वैसे तो नदीम मंसूर साहब आपने अनवर के गाने की फरमाइश की थी, वो हमारे सिस्टम में नहीं है, लेकिन अनवर का ही गाना मैंने चुना है ताकि आप कम से कम अनवर का गाना तो सुन लें। तो नदीम मंसूर साहब शुक्रिया आपका, आपके नाम करेंगे इस गीत को, और आबिद भाई आपके स्टाफ के नाम, गुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम, और प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी करते हैं, और साइमा जी आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं, सुनते हैं अनवर को, और साथ निभा रही हैं कौन, ये साथ में सुनते हैं और फिर पता करते हैं

0: मंसूर साहब, उम्मीद रखते हैं कि अनवर और लता जी की आवाज़ों में आपने ये हीर रांझा फिल्म से लिया हुआ गीत ज़रूर पसंद किया होगा, क्योंकि आपने अनवर साहब के की आवाज़ में गीत सुनना चाहा था जो हमारे पास नहीं था, तो मैंने फिर उसके मुतबादल ये गीत आपके लिए पेश किया इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा। और अब वक्त जो है वो बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है और साथ में टाइम चेक का भी, तो हुमा जी टाइम बता देंगे जरा आप।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: जी इस वक्त 11:45 बज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 11:45 और कमर्शियल का टाइम हो जा रहा है, तो हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
0: कमर्शियल के बाद क्या करेंगी आप?
2: कमर्शियल के बाद सॉन्ग्स
0: सॉन्ग लगाएंगे
2: जी।
0: कौन सा, पुराना नया, क्या सा लगाएंगे?
2: पुराना लगाएंगे ना, फ्लैशबैक चल रहा है।
0: हाँ सही है, सही है। तो दोस्तों चलते हैं अब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे सदाबहार आप पुराना गीत, वो नज़र करेंगे आबिद भाई, गुलाम भाई और नदीम मंसूर साहब, हीरा खान साहब, तारिक जुल्फी साहब, खान भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम, सफीउल्लाह भाई के नाम और जनाब चौधरी मुजफ्फर साहब के नाम, और इसके साथ साथ जहाँ कहीं भी आवाज़ जा रही है सन रेडियो की, उन सब के नाम।

0: चिड़िया कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: समथिंग न्यू इज कुकिंग एट जिन्ना रेस्टोरेंट। Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: रफी साहब की प्यारी सी आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आपने, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जो है वो लगता है कि इस आवर का ये आखिरी गीत होगा। तो हमारी जी आप क्यों खामोश हो गई हैं?
1: मैं भी देख रही हूँ नेक्स्ट हमने कौन सा सॉन्ग लगाना है।
0: वो तो ये मैंने सेट कर लिया है ना
1: जी।
0: तो लेकिन आप चलिए गाना ही लगा देते हैं फिर, क्योंकि ये गाना जो है ना ये इस आवर का आखिरी गीत होगा। क्यों हम फिर अगले आवर में चले जाएंगे? हाँ। तो अगले आवर में जाएंगे तो इस आवर का प्रोग्राम जो है जो गीत थे लगता है कि सभी को काफ़ी पसंद आए हैं। अगर नहीं तो जनाब बताइएगा ताकि अगले आवर में जब आप जाएं तो आप दोस्तों के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो गीत हैं वो लेकर आएं, ताकि इस तरह के गीत ना प्ले करें जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और प्रोग्राम में शमूलियत के लिए नंबर होगा 01274306666। तो आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं, प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आमिर शहजाद और उमा खान साहिबा। तो अब जनाब चलेंगे अगले गीत को सुनेंगे ना, ये पुरानू में शामिल है ना, ये जी
1: ये बीच वाला गाना है।
0: हाँ ना पुरानू में नया नई में
1: जी। लेकिन अगर हमें लिसनर कॉल करके बताएं कि वो क्या सुनना चाहते हैं तो हमारे लिए भी बहुत इजी हो जाएगा और आप लोग को भी मजा आएगा सुनने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल उमा जी सही आपने कहा कि अगर प्रोग्राम में आप शामिल हूँ अपनी पसंद का बताएं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है, हमें गीत
1: हमें बहुत खुशी होगी।
0: हाँ सही है, थैंक यू। तो चलते हैं सुनते हैं ये पहला सा गीत।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद और हुमा खान साहब आपसे मुखातिब हैं और जनाब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। और हुमा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं और हिट ऑफ द आवर का टाइम हुआ जा रहा है। हम इसके बाद
0: बड़ी जल्दी खत्म कर देती हैं बात को।
1: नहीं खत्म की,
0: खाली
1: अभी मैं बोल रही हूँ। अभी
0: तो बोले ना, कुछ और कहे ना, बस ये करके तो आप गाना लगा दें।
1: जी नहीं, इतनी जल्दी में नहीं लगाना है, हमने बात करनी है।
0: हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही बातें करें, बस ये हिट ऑफ द आवर लगा के बस चलो जी।
1: नहीं
0: ऐसा तो नहीं करना है।
1: हाँ
0: हाँ, तो अब जो गाना हिट ऑफ द आवर का प्ले करेंगे, ये तबस्सुम बहन है मीरपुर में सुन रही हैं
1: जी,
0: उन्होंने फरमाइश की है इस गीत की, वो सुनना चाहते हैं आसम के लिए और शहजाद के लिए।
1: अच्छा।
0: तो उनकी पसंद का जो गीत है हिट ऑफ द आवर की शक्ल में हम पेश करते हैं। और रीटा बेटिया, आपने जिस वो सुफियाना कलाम है, आपने मेरे ख्याल में गुरदास मान की आवाज़ में है, वो हमारे सिस्टम में नहीं है, तो अगर कोई और गीत आप सुनना चाहती हैं उसकी फरमाइश कर दें तो हम ज़रूर आपके लिए कोशिश करेंगे, अगर सिस्टम में हुआ तो आपके लिए प्ले करेंगे। तो फ़िलहाल तो तबस्सुम बहन की पसंद पे उनकी ने जो फरमाइश की हिट ऑफ द आवर की शक्ल में पेश करते हैं, तो चलते हैं सुनते हैं फिर हिट ऑफ द आवर, उसके बाद मिलते हैं।
2: The Hit of the Hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-011.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, तबस्सुम बहना मीरपुर पाकिस्तान कश्मीर से आपने रिक्वेस्ट की इस गीत की, और हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप का फेवरेट गीत प्ले किया। और इसके साथ ही अब चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
2: जी, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही है कि 12:13 हो रहे हैं। इसका मतलब 12:13 एंड हमारा कमर्शियल का टाइम हुआ जा रहा है, तो हम कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं इस वक्त।
0: ठीक है जी, अब कमर्शियल की जाने बढ़ेंगे, और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा सॉन्ग होगा मेरी जन्म से आप तमाम सुनने वालों के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद दोस्तों मिलते हैं।
3: नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
5: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब क्या है कि हम सोच रहे हैं कौन सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश किया जाए। यकीनन जो गीत पेश करेंगे वो अच्छा ही ढूंढ के पेश करेंगे। तो आप हुमा जी कुछ कहना चाहेंगी?
1: जी, मुझे तो पकोड़ों की खुशबू आ रही है।
0: पकोड़ों की? वो किधर से?
1: वो बारिश के हिसाब से सबके बन रहे होंगे, जिसने जिसने खाने होंगे बना रहे।
0: अच्छा, लोगो इतनी तेज नाक है आपकी
1: कि मुझे माइक से खुशबू आ रही है
0: कि कहाँ कहाँ पकोड़े बन रहे हैं इस वक्त। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था
1: जी।
0: है?
1: मुझे तो
0: वाकई भाई आप सही कह रही हो, ये माइक से खुशबू आ रही है पकोड़ों की। आई कौन पकोड़े बना रहा है भाई, बताइएगा हमें कौन पकोड़े बना रहा है। तो चलिए जनाब, अब एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं, जो यकीनन आप दोस्त सभी पसंद करेंगे। पाकिस्तानी गाना है, इसकी फिर कॉपी भी की गई थी, अरिजीत सिंह ने भी इस गीत को गाया, लेकिन रिजनली ये गीत है शेर अली बगा और दूसरी लड़की है उनके साथ। तो थोड़ा स्लो गीत है, लेकिन मन कर रहा था इस गीत को सुनने का तो हमने सोचा कि आप सभी सुनने वालों के नाम भी कर दें तो अच्छी बात है। तो चलते हैं, सुनते हैं ये गीत और हमारी जन्म से आप तमाम सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने इस गीत को पसंद किया होगा। और अब जनाब वक्त जो है वो कमर्शियल का हो गया है, और जो हमें रीटा बेटिया आपने हमें एक और फरमाइश की है, और वो गीत जो है हम ट्राई कर रहे हैं आप के लिए जो है वो ढूंढें, लेकिन माज़ चाहते हैं वो गीत भी, यानी कि साजन का घर फिल्म से आपने सुनना चाहा था, वो भी ढूंढा मैंने बहुत, वो भी यहाँ मुझे मिल नहीं रहा। हो सकता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ साथ में, वो होना चाहिए वो गीत, पता नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। और आप उस फिल्म का एक ही गाना पड़ा हुआ है, मज़े की बात है, और वो गाना जो आपने फरमाइश की वही गाना पड़ा हुआ है इस फिल्म का, और कोई गाना नहीं है।
1: बाय चांस
0: वही गाना पड़ा हुआ है। तो रीटा बेटिया अमेरिका में सुन रही हैं हमें, और पहली फरमाइश आपने की वो हमारे पास गीत मौजूद नहीं था और माजर की थी, और अब जनाब आपने जो है वो और गीत की फरमाइश की, शुक्र है ये मिल गया। तो आपके नाम करेंगे आपकी जानिब से, आप अपनी इमाम नौतान साहबा के लिए सुनना चाहती हैं तो उनके नाम करेंगे, और जिनकी कल बर्थडे थी सोबत भाई लीड्स वाले, तो जनाब हाँ तो उनके, उन्होंने भी कॉल की, उनके नाम भी करेंगे। और अब खान भाई फ़ोन कर रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे जनाब, और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। रीटा बेटिया की पसंद पे कमर्शियल के बाद गीत होगा, तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, उसके बाद गीत।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। रीटा बिटिया अमेरिका में सुन रही हैं, उन्होंने इस गीत की फरमाइश की थी। और तबस्सम बहन जो हैं वो मीरपुर में सुन रही हैं, बोलती हैं ये भी मेरा फेवरेट गीत है, तो आपके नाम भी करते हैं जनाब। उसके बाद महबूब अल्लाही साहब, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का जनाब, और आपके नाम भी गीत करेंगे। और हुमा जी, आप कह रही थी ये सैड कर दिया आपने, मस्ती भरा गीत लगाओ और ये गीत लगाओ, तो फिर मैं मस्ती भरा गीत लगाऊं?
1: जी जी, मस्ती भरा।
0: चलिए जी, अब उमा जी की पसंद पे अब कमर्शियल के जो नेक्स्ट गीत है वो उनकी पसंद पे आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं, तो सुनते हैं इस गीत को उमा की पसंद पे, तो एंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने इंजॉय किया होगा और ये उमा जी की पसंद पे मस्ती भरा गीत प्ले किया था। तो अब वक्त हमें बता रहा है कि जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है, तो कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा और वो होगा हीरा खान साहब। आपने अभी फिर फ़ोन किया, शुक्रिया, आपके नाम होगा और महबूब अलाई साहब और खान साहब आपके नाम भी और सोबत भाई रीड से आपके नाम भी, अब्दुल क्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल वालों ने फ़ोन किया, आपने बताया ही नहीं, भूल गई आप,
1: मेरे दिमाग से उतर गया,
0: आपसे दिमाग से ही उतर गया
1: जी।
0: चलिए कोई बात नहीं, मैं तो अभी निगाह पड़ी फ़ोन की लिस्ट पे, देखा अब्दुल क्यूम साहब का फ़ोन आया था, तो माज चाहते हैं अब्दुल क्यूम साहब सॉरी आपके नाम भी करेंगे, आबिद भाई, गुलाम भाई, नदीम मंसूर साहब और जनाब दीगर तारी जुल्फी साहब और सफीउल्ला भाई और दीगर तमाम दोस्त। और इस वक्त कोई गीत नहीं हुआ अभी तक मलिक इम्तियाज़ की टीम के लिए, तो उनके नाम भी ये सदाबहार पुराना गीत करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, लेकिन पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी
1: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 12:45 हो रहे हैं, यानी कि 12:45, और हम कमर्शियल की तरफ जा रहे हैं।
0: जी, कमर्शियल के बाद अब सदा बाहर पुराना गीत सुनेंगे, तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल।

जी दोस्तों, अभी आपने लता जी की प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा गीत सुना और अब गीत की बारी आती है। जो गीत क्या है कि इस आवर का जो है वो आखिरी गीत होगा, तो अब समझ नहीं आ रही कि कौन सा गीत जो है वो आपके लिए प्ले करें, क्योंकि टाइम बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया और छोटा सा गाना चाहिए, और वो छोटा सा गाना जो है ताकि आराम से सुकून से हमें जो है वो ले जाए अपने खबरों तक। तो ये थोड़ा सा काटना पड़ेगा हमें गीत, लेकिन अच्छा गीत है, सोचा आपके लिए प्ले कर दूँ।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं और अब जनाब एक लंबा सा गीत जो है हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश करता हूँ। और कभी ये प्ले करूँ तो गुलाम भाई को बहुत अच्छा लगता है ये गाना। उनके नाम भी और दीगर रीरा खान साहब और स्पेशली तबस्सम बहन, आपने कहा था कि आप अल्ताफ राजा की आवाज़ में सुनना चाहती हो लेकिन वो हमारे सिस्टम में नहीं है, तो इसके मुतबादल ये चला देते हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने मोहम्मद अजीज की आवाज में बहुत ही लंबा गीत सुना, लेकिन बड़ा मजे का गीत था। यकीनन आप दोस्तों को पसंद आया होगा। कहाँ गायब हैं आप? आप किधर गायब हो गई हैं काफी देर से?
1: सॉन्ग ढूंढ रही हूँ इस वक्त।
0: आप सॉन्ग ढूंढ रही हैं, लेकिन प्ले तो करती नहीं है। एक किया था, रस्ते से जा रहा था
1: जी, वो आपने किया था प्ले,
0: लेकिन आपने बताया ना वो
1: जी,
0: आप
1: ढूंढ रही हूँ अभी कितने सॉन्ग हैं जो उसमें नहीं है।
0: अच्छा अच्छा, चलो ढूंढ रही हैं अभी। आप ढूंढते रहिएगा, पर बोलिएगा भी
1: जी। जी जरूर,
0: क्योंकि अब टाइम जो है बड़े नाजुक मोड़ पे आ गया है और प्रोग्राम का वक्त बड़ा तेजी के साथ जा रहा है
1: जी।
0: तो अब चलेंगे दोस्तों कमर्शियल की जानिब। इकमाज आपने फोन किया जी,
1: वही मैं बताने लगी थी, कॉल आई थी इकमाज की।
0: हाँ इकमाज की, तो इकमाज आज माजे चाहते हैं। आप दोस्तों के लिए कोई गीत नहीं प्ले किया, आपने फोन किया। इकमाज आप मलिक इम्तियाज साहब के लिए, मुनीर के लिए, वसीम के लिए, इमरान के लिए, मुजाहिद, अल्लाह देता, उमेर, बाबर और इफराज के लिए गीत सुनना चाहते हैं, तो आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ प्यारी बहना सादिया जी, हाजरा जी आपके नाम भी करेंगे, और काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं उनके नाम भी कोई गीत नहीं किया। इकरा जी आप सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए, और गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके पूरे स्टाफ के नाम, आबिद भाई आपकी जन्म से आपके पूरे स्टाफ के नाम, और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, उनके नाम भी और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शल। कमर्शल के बाद आप दोस्त गीत सुनेंगे, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, Milton Keynes, and West London, with even more areas coming soon. Call 01274-735043 or email sales@sunriseradio.fm.
5: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.
6: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

0: जी दोस्तों, आपने ये गीत सुना उमा की पसंद पे और यकीनन आप दोस्तों ने इस गीत को एंजॉय किया होगा। और उमा जी, आपके जहन में क्यों आया ये गीत प्ले करें?
1: क्योंकि ये सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा खुद भी पसंद है, इसलिए मैंने सोचा सबको सुना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब वक्त जो है वो हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है और दोस्तों चलेंगे जोहर की अजान सुनेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद दोस्तों मिलते हैं। ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।
2: Allah

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी समीन, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और अब क्या है कि वक्त बड़ा तेज़ी के साथ गुजर गया और हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होने वाला है। पता भी नहीं चला कैसे ये 3 घंटों का सफ़र जो है आप साथियों के साथ गुज़रा, इसका एहसास नहीं होता। अब यूँ लगता है अभी हम आए और अब जाने का टाइम भी हो गया है। और दोस्तों, अब काफ़ी दोस्तों की जो है वो आज फरमाइशें पूरी की हैं और सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ दोस्त शुरू से हमारे साथ हैं और कुछ दोस्त अभी भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:44, यानी कि 44

0: झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रफ़ी और लता जी की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत था। और मुगल साहब लीड से आपने फ़ोन किया, लेकिन यह गाना हम उस वक्त चला चुके थे, आपकी कॉल बाद में ली, तो आपके नाम करते हैं ये गीत। और इरा खान साहब शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। और आखिरी गीत होगा प्रोग्राम का अब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म
1: होते जा
0: रहा। आप तो खुश हैं या ना खुश हो ही?
1: बस इसमें खुशी की,
0: मेरे ख्याल में खुश हुई है कि प्रोग्राम खत्म हो गया।
1: नहीं, इसमें खुशी की क्या बात है,
0: बोलना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बोलना पसंद नहीं करती मेरे ख्याल में।
1: नहीं, मैं बोलना बहुत, मैं बहुत बोलती हूँ, मुझे घर में बसंती बुलाते हैं, मुझे पता नहीं माइक पे आके क्या हो रहा है।
0: माइक है, छोटी सी चीज है, ऐसे हाथ से मारो तो उधर गिरे जाके, इससे क्या डरना
1: जी।
0: तो आप कुछ और कहेंगी?
1: जी, अब टाइम ख़त्म हो जा रहा है, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है नए प्रोग्राम के साथ।
0: ठीक है जी, बहुत अच्छा शॉर्ट कट करके फर्क कर दिया, खुदा हाफिज़ कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। खान भाई आपने भी फ़ोन किया, आखिरी गीत आपके नाम भी, और दोस्तों मुझे भी अमर शराद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: कफन अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाएं रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
0: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: मूव फॉर 10 आ गया है। दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करे महीने में 10 दफा। मुझे अब ज्यादा एनर्जी फील होती है और कॉन्फिडेंस भी। अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की ख्वातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें। सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: जायश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
1: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
0: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुआ के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
1: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंडा ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
3: This is Sunrise Radio on FM, DAB, online and mobile.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो पर इश्तिहारबाजी आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सर्फिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को लोगों के जहनों में नमाया रखती है। हम यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लैंकाशायर, मल्टन केन्स और लंदन में नशरियात पेश करते हैं और जल्द ही मजीद इलाकों में भी सर्विस का आगाज हो रहा है। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी पेशकश से फायदा उठाने के लिए आज ही 01274735043 पर कॉल करें।
3: My favorite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move

0: Ladies and gentlemen,
1: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
2: Number one.
3: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Who doesn't want to save money on their energy bills and improve their home at the same time? Home Energy West Yorkshire can help you do just that. They offer free, impartial and easy to understand advice, no matter the size of your home or budget. Find out more at their Bradford Interchange pop-up shop every Wednesday and Thursday between 10 and 4. You could even win a prize, including shopping vouchers and family days out. Search Home Energy West Yorkshire.
1: गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: देखो वेखो B21 दे मुंडे खड़े इन्हां नूं पुछो इन्हां दा काम की है इत्थे तुहाडा शहर केड़ा मुंडे हो
1: साडा शहर जलंधर
0: ते तुसी चंडीगढ़ की करदे हो
1: जी

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।